पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पार और मति सुनोर ले वजो बिदुणा खाय खसमे करे बराबरी फिकार तंदर पार वजो गुवाए कला मोहि मोहि पाणा खाए जिस दा दिता खाओ।

प्रथम भगौती सिमरकै गुर नानक लै त्याए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पात सहा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जे सब थाई होए सहाय दसा पात साहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारियां सोहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जापिया वंड सगया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रिया ना

चित आवे, चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ न विछोड़िया गया है खुले दरसन दीदार तिस

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चहन अर वरन जात अर पात नहिं जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभौ प्रकाश अमितोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कन हर बूंद बसौ रोमावल कुसम बसंत गनंत नायाव राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल

माता तरत महत दिवस रात दे दाई दाया खेलै सगर जगत जंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत खा नानक ते मुख उज

सुख रोग भया जा सुख तामना होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा तना जाई लख्या रहो, जात मह जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां जो किस करना सो।

यो परया सैल पत्थर मह जंत उपाई ताकारिजक आज्ञा कर तरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किस की तरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मान पौ करिया उडे उडे आवै सै कोसा तिस पाछै बचरी शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमर

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हरे पुरख निरंजन हरे अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जी आका दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू काट काट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वाड़े अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय।

प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

काशपि दन जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा,

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आरियायत, देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय,

अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसोह कुरसोह चट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह,

निज कर महल पावहु सुख सहजे, बहर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मुख कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख विदाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मुख

ओडिया पिने आप साजी अपन रचुना दुई कुदर साजी एक रासन डटो चा दाता करता अब तू तुस देवे करे पसा तू जानो ही सबसे दे लैसे हैं जिंद को आओ करिया सुन डटो चा।

चित चितमो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं। सर चिन तुझ बास सत संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा अगम अलह कारण पुर जो फरमावे सो कहूं। गुरे अमरदास कारण करना जिव तो रख तिव रहूं। गुरे अमरदास कारण करना जिव तो रख है

0: गुर ज्ञान और ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै सच सच जानिए एक चित है लिव लावै काम क्रोध वस करे पौन उड़ंत ना तावै निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ विचार पावै कल मह रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सो भिखा कह सहज रंग दर्शन दियो रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तपसिए मुखो है पंडित मिठे बरस एक हो फिरियो किने ना परचों लायो कहत्या कहती सुनी रैत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुनों क्या कहो गुरु ने मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो जिव तू रखे तिव रहो
1: पहर समाध सुनाहो ज्ञान है।

पौड़ी कप्पर रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आप ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव दे राह पीड़ा गया जावना नंगा दोज चलिया ता दिसे खरा डरा।

अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाई ए तरंदा महला पहला।

0: पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़ियाई आपे ही कर्म कराएंदा वडो वड़ा वड़मेदनी सरै सिर धंधे लाएंदा नदर पट्ठी जय करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा दर मंगन पिखना
1: राम कली महला तीजा आनंद।

पौड़ी आप पे ही करना क्यों कला पे ही तय तारी है। देखे की ता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी पुराण है को साहे मन विसारी है। अपना थी आप